हम कशवरु तकुरार को केवे हैं आयताय मैं खम बुडविगम वा कुरवांग तिमन रसकलांगे खलेग फान दिव्य में।

शक्केन्नेते हम कशवरु एवरिन सिर्रुकुरा कंतकाय फाळुकुरा कंत अल्लाह देनवडिगे मेते हम कशवरु बडावे गन्न मीहुंदेके एकलांगे लोबिवे वडिगे निन्नुवेते।

0: हंगार
1: अंगार दो मिंद्र कोरी इकार गड़ फन रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होगेरे मिंदमो बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार हम एकनी दिवे राज्य चाडू
2: එංහා 4340 kHz medium wave 890 MHz FM band
3: දිවේ රාජ්‍යයේ අඩු ගඩිමහර හබීර හතරගොඩ පැනමිට අඩු සුම් තිගින්දමනි දිවේ රාජ්‍යයේ අඩු

0: एहम दोस्त के एक गोता मेदग प्रोग्राम गस आंटी शेकुदी ना रीत लवे गिनेस्ते ना मी लवा कुरिया दा गड़ी गा स्टूडियो गा तीवी कुदी ना आंटी मसे कते हवाल को लाना एहम मी लवे या की प्रोग्राम अडो हां तीवी कुदी ना देवे हादिया के गोतगा आंटी में गिनेस्ते लवे इंगे
1: लब्बा
0: एहम मेदु मी लवा गिनेस्ते वगुतु स्टूडियो गा तीवी कुदी ना मा एहम दोस्त के एक गोता की को लानी ಹಲೀಂ ಕಿಯಾಫಾವಾ ಲವೇ

0: kulivartauge TikTok video challenge.
1: Tirashuga kule eid kulivartauge video ta alugun menna hissa kurawwa.
0: ए मिनिटा 30 सेकंडा देमेदुगे कुरु वीडियो ए दिवह राज्य गडुगे टेलीग्राम नंबर 731 6951 फणुवा
1: एहुन तेरिम फणुवा वीडियो ता दिवह राज्य गडुगे टिकटॉक पेज अपलोड कुराड
0: एमे गिना व्यूज दिबे वीडियो इन हुशेडी फरातका एंगास रुफियागे फ्यासागी नाम
2: नसीबरिया ऐलान कुरानी मे 29 वन दुहुगेरे दिवह राज्य गे अडुगे टिकटॉक लाइव के तेरे
3: ईद कुलवरतोगे टिकटॉक वीडियो चैलेंज एंहा 7349 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव आदि 89 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड हमेकनी दिवे राज्य गडु

0: সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস কুরআন ফাবে ইন আল্লাহ কাতাবা কিতাবান ক্বাবলা আন ইখলুকাল খালক ফাহুয়া মাকতুবুন ইনদাহু ফাওকাল আরশ মানে হামকাশওয়ারুন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা খালকতাকুম ফাদাম গকুরিগা ফতিল লিউভিয়ে এই লাউহুল মাহফুজ এফওয়ানি একালান হযরতুকা আরশি মাতি গাই
1: ಮೇ ದಿವೆಹಿರಾಜೆಗಡು ಹೆಗ್ಗಡ್ ತಿರಿಸ್ತೆ ಮಿನಿಟು ಗಮಿ ಗೆನಿಸ್ತೆನಿ ಮಿರೇಗೆ ಇಶಾ ನಮಾದ ವಗೊತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದು
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು

0: हांगार अंगार दो मेंदुर कुरी इकार गड़ फणा रहें रिपीट एरे दियागट तिरी हूं आदि बुद्ध दो होकेरे मेंदम बार गड़ तिरी हूं हांगार
1: हम एकनी दिवे राज्य क्याडू कामिया पिये फारवेरे कवाम बेनुंता कामिया पिये फारवेरिंगा तुम इरुशाद होदं बेनुंता व्यापार फुरां कुरम बैनुं तक।
0: वुन दंकार।
2: कम में होने हीर दोहे गहेंदुनु नौ गिट फन्ना रहेगा। रिपीट होने हीर दोहे हावीरो हाथरु गिट फन्ना रहेगा। आदि आदित्त दोहे हावीरो हाथरु गिट फन्ना रहेगा।
0: इंगा सतर से 149 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव 89 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड।
2: हम ऐकनी दिवे ही राज्य के अड़ूं।
3: गाड़ी में दमंगल में तीन गाड़ी तीरिस मैं दिव्य राज्य गाड़ू
4: मैं आम को पुरी या उम्र फुरे का तैयार को फावा प्रोग्राम है।